0: उनके क्या करवा था जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो।
1: पावर पावर ऐसे से शुरू होना ऐसे से खत्म हुई। पावर तो सर क्यों कहाँ से ले ली?
2: फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे तुम करना चले जाओ।